0: रोलपाली मुस्कान डेंटल क्लिनिक लोकतांत्रिक चौक लिबांग रोलपा।
1: हर हर को आवाज गांव शहर को आवाज हर एक मन मुटुमा गुंजी रहने रोलपाली आवाज यो हो तपाईको मन।

0: मेलायु मायुका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योनी मस्तक जरुरी सूचना जुमु पेला खिमृदे गरम ओगोदी जेउ पेला सुनो फुरी पदास ओचुदी जेउ आउ पेला क वन जंगल ल घे लागिने मस्तज संभावना चाहिए आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र संक्षिप्त ज सक्षम नारी वातावरण मिलेने ल ख्याता असर केने रि मूल र थङने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तज तानादे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामे ल घे लागिने सज जिमी किमे लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिन्दगी को ठेल मिला कि नाटी जन धनी में खेपा छिपी ताऊ हो फोकाई
1: छानेला
0: बनलाइटरने
1: चीज रांगा रे पोल गेने इतो चीज रही वन जंगल गे बाबा
0: पिकनिक वन भोज बा मे सचांग छिन्नी मेले चाउसो सही।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: ओहो, आज त धारामा कति धेरै धमिलो पानी आएछ है।
2: अब वर्षा लाग्न थाल्यो, यस्तो पानीले त झाडा पखाला, आउ, हैजा, टाइफाइड जस्ता

0: लगता असर किए ली उमूल रथने भूछे ताने वायुमंडल ल कार्बन मस्त जताने भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामे लिए लागिने सज जिमी किमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख गिजिम के कोठे लिए लागिना दे जन धनी खेप्पा छिटी ता उठो फोकाई
1: वन
0: जङ्गल सर मेरा आइरी बानी एमएल एमए हो सछामेला लिउसोकर पोतरालाई पार जगे हटे
1: सलाई लाइटर स्याउला मे सचाउने चिज रालाई हिजा बाङ्जा र यामाले पोल गेने या इत्यौ चिज र रहे वन जङ्गल याल के बाबा या
0: पिकनिक वन भोज बाक मे सचाउँछु छिन्नी मेले चाउ सोसाइटी खेनाले वन जङ्गल ओसो छाम्नु दाइके बारीको चुरोट विधि ओरे बनाई कोबा
1: नाङथाङ नाम्लो लिज्यौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हुने झाले छ अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसो दिदी
0: गेसो छामेला खोरेल चाउसी खोलिए हरिदे तरिन गाई गेजम हेकेलाई जु अब नजिरे बनाई गेङ गेल गेजम हेकेमा लाए औलेन लायो के लाइए
1: वन जङ्गल छ जुडिसी हो घेङ बारी ल बाली नाली कुचिला चुली यात्रा रस चाउसो छिनी ने चाउसो सैदेकी खेले
0: वन जङ्गल मेला गेमाइए
1: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा